फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

ही सुनवालों की सेवा में मेरे तरफ से हरेक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज भी फिर बृहस्पतिवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है सारी सालगिरह।

विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले मिलकर अगला भजन को सुनते हैं आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में।

हवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अबकी बार हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन नजर नहीं आते, लेकिन वह हर पल हमारे पास रहता है। खुद भगवान ने कहा है कि भक्त संग छारो नहीं, भक्त संग छारो नहीं, सदा रहूं तिन पास, जहां न आदर भक्त का वहां न मेरो बास। मैं सदा अपने भक्तों के पास रहता हूं, चाहे भक्त कहीं भी हो, मैं उनका साथ कभी नहीं तजता। जहां मेरे भक्त का आदर नहीं होता, मैं वहां नहीं रहता। भगवान कहते हैं, जहां भक्त मेरे पैर धरत हैं, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। फिर भी भक्त भगवान से क्या कह रहा है,

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। सुंदर भजन जो अब की बार पेश किया जा रहा है प्रसून मुखर्जी।

सुंदर सा भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में, प्रसून मुखर्जी की आवाज में आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, खासतौर पर मिका सुखो जी की आवाज।

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भी भजन यात्रा का प्रोग्राम जो है आज का खत्म समाप्त होने पर आ गया है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे आरती भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है, और यहाँ तक आज का भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

60 66 11. चलिए अबकी बार कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे घी गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लक उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

सुखविंदर सिंह एन शिल्पा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम में

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

दुनिया में छाए मनित वैधित हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 3 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बाहर की ओर देखा जाए बारिश का मौसम है, अंधेरा अंधेरा मौसम है, रिमझिम बारिश हो रहा है, समय समय पर जोर तोर से बारिश हो रहा है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन पेश किया जा रहा है और आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना, पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में आप जरूर सुनते ही रहना। 9:07 प्रोग्राम 7 मिनट वेटेड हो चुका है।

Ricky Evans में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना लेकर। गाना का बोल है मेरी भीगी भीगी सी है, सॉन्ग बाय द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आज की प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म 1952 का रिलीज किया हुआ फिल्म, फिल्म का नाम है बाउजू बाउरा। उसी फिल्म का ये सॉन्ग पेश किया जा रहा है, ये गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद

इसी फिल्म का गाना पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना तू गंगा की मौज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और चलिए अब की बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: कर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में बजी है प्यार की सहनाइया। अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की ओर।
1: देखिए क्या ढूंढते हैं,
0: और गाना का बोल है अपनी भी क्या जिंदगी है, मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

जिंदगी है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे मन्ना डे की ओर। मन्ना डे की आवाज में ये गाना, फिल्म का नाम है आनंद। आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में।

Anan. Purani film Anan ka geet peesh ki gayi song by Manna De ki awaaz mein abhi aapne suna. सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60. मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार हम आपको ले चलते हैं फिल्म अभिमान की ओर।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में सोमभाई किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और एक काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में लता जी की आवाज में।

केसकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में अबकी बार तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

लताजी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए काफी खूबसूरत गाना की ओर मन्ना डे और लता मंगेशकर होगा आपकी बार प्रोग्राम में।

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम सुजाता।
1: दोनों बातें एक ही आवाज में ऐसी खूबसूरती से समाती हैं और जो कुछ भी गाते हैं ऐसी सरलता से गा जाते हैं जैसे कुछ भी प्रयास ना करना पड़ा। यूं तो इन्होंने बहुत से गीत गाए हैं लेकिन ढूंढ लाया हूं ये गीत मैं तेरे लिए।

गाना जो पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए एक और खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए एक गीत पेश किया जा रहा है और वो भी द माइटी मुकेश की आवाज में, माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेज भी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में अपने हुए पर आए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में।

पीस की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पीस की गई।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर और अनुराधा पोटवाल के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिल्म का नाम है मर्यादा।

पुरानी फिल्म मर्यादा का गीत भी इसकी गई मोहम्मद रफीक की आवाज में अभी आपने ये सुना। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए आज के प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो गीता दत्त की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गीता दत्त की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है

0: जाऊंगा। मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
1: राघा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: राघा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एंकर।

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमी और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है उमराव जान।

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

दुख की खबर आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पीस किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। Utrecht, ondiep nummer 65 se, nummer 65 se. Samas dukhit palivar bidesi, au samas larkan bahut dukh ke saath ye sarvajanik suchana de rahe hain. Ravivar 23 tarikh, August, Sondag 23 augustus, 57 saal, 57 saal ki aayu mein. Swargiya Pita Shri Mahabir Bidesi aur Mata Shri Savitri Bidesi Baldev Rai ki beti, हेमंत कुमार विदेशी, जगदेव विदेशी, रामदेव विदेशी, सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, सवित्री सुखु विदेशी, ईश्वर देई गणपत सिंह विदेशी और दो स्वर्गीय बहन सविता पार्वती विदेशी और कमलावती विदेशी के बहन स्वर्गीय राजेश सुखु के सारी, जय गणपत सिंह के बड़की लड़कन संजय बदल और रायश्री बदल, कविता गणपत सिंह, प्रियांग गणपत सिंह, त्रिष्मा गणपत सिंह, अमृत रामसुदित, अर्जुन रामसुदित, अविनाश रामसुदित, नरेश सिंह और प्रभनूर सिंह के मौसी, नादिया रामसुदित के मौसिया सास, रायन विदेशी और अमृता ठाकुर विदेशी के फुआ, अजय ठाकुर के फुआ सास, निर्मल रामसुदित और अभय रामसुदित के आजी, रानी ठाकुर और रेशमी ठाकुर के नानी। उत्तरेख ओंदीप नंबर 65 की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु हो गई है। अर्थी शुक्रवार 4 तारीख सितंबर, फ्राइडे 4 सितंबर स्मिडक्स 2 uur, क्रेमेटोरियम दालवैक, फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7, उत्तरेख ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि घर पर बैठक नहीं है, एर इस खेन बैठक आन हाउस। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या सबस दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो 2 तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06 28 21 64 82 और दूसरा तार की नंबर है 06 38 25 97 25। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है।

रिश्वत कर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

चलिए गानाबस प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में एक फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश भी इसकी सर ये एड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226611।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

प्रभा के आवास में। द फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब कई बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कसम से

कयामत से कयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

आवास में गाना प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

का गीत पेश की गई तलत महमूद की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है आज का पंछी।

SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आस का पंछी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलेंगे फिल्म बासी की ओर। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

में गाना पेश की गई फिल्म का नाम था बांसी। गीता दत्त के बाद मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव्स पे इसके जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी है। अनमोल घड़ी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नूर जहान की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पेश की गई फिल्म का नाम अनमोल घड़ी है। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलेंगे आपके बार मुकेश जी की ओर। फिल्म का नाम तीसरी कसम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हार्ट ऑफ द मिलियंस माइकी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। ये फिल्म का नाम था तीसरी कसम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर, और हम आपको ले चलेंगे 1962 का फिल्म का नाम 20 साल बाद।

गाना पेश की गई स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गति पतंग का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म गति पतंग सॉन्ग बाय द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार।

पति पतंग का गीत पेश की गए किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी फिल्म का नाम द ट्रेन।

पश्चिम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। खासतौर पर दलित मनोज कुमार का खास फिल्म है फिल्म पूरब और पश्चिम जो प्रोग्राम में पेश की गए। चले प्रोग्राम में फिल्म संगम की ओर।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म संगम का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। मुकेश और आशा जी की आवाज में अबकी बार ये गाना हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम साथी, 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म है, फिल्म साथी, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की ओर, और फिल्म अदालत का गीत पेश होगा तुमसे दूर रहकर।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म और जान पिघल के। गजों दो लता मंगेशकर एंड अमिताभ बच्चन वॉज दिट प्रार्थना लीजिए अर्ज सिलसिला। गाँव द फेर्दर मैट अर्द फिल्म टाइगर जिंदा है, गजों दो नेहा भासिन कम दिल दिया गल्ला।

0: छोड़ जाऊंगा।
1: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडैम में।
2: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडैम में।
0: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
1: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
2: शो आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
1: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ गजान दूर चित्राए के एंड द फिल्म काटे कॉम्त इश्क समंदर.

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। उत्तरेख ओमदीप नंबर 65 से नंबर 65 से समस्त दुखित परिवार विदेशी और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। रविवार 23 तारीख अगस्त सोंदाख 23 अगस्त 57 साल 57 साल की आयु में स्वर्गीय पिता श्री महावीर विदेशी और माता श्री सवित्री विदेशी बलदेव राय की बेटी रॉबी हेमंत कुमार विदेशी, जगदेव विदेशी, रामदेव विदेशी, सुशीला विदेशी, सीता सत्यवती विदेशी, सवित्री सुखु विदेशी, ईश्वर दे गणपत सिंह विदेशी और दो स्वर्गीय बहन सविता पार्वती विदेशी और कमलावती विदेशी के बहन स्वर्गीय राजेश सुखु के सारी, जय गणपत सिंह के बड़की लड़कन संजय बदल और रायश्री बदल, कविता गणपत सिंह, प्रियांक गणपत सिंह, त्रिष्मा गणपत सिंह, अमृत रामसुदित, अर्जुन रामसुदित, अविनाश रामसुदित, नरेश सिंह और प्रभनूर सिंह के मौसी, नादिया रामसुदित के मौसिया सास, रायन विदेशी और अमृता ठाकुर विदेशी के फुआ, अजय ठाकुर के फुआ सास, निर्मल रामसुदित और अभय रामसुदित के आजी, रानी ठाकुर और रेशमी ठाकुर के नानी। उत्तरेख ओंदीप नंबर 65 की रहने वाली गायत्री विदेशी की मृत्यु हो गई है। अर्थी शुक्रवार 4 तारीख सितंबर, फ्राइडे 4 सितंबर स्मिडक्स 2 uur, क्रेमेटोरियम दालवैक, फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7, उत्तरेख ओवरवेग में दाह क्रिया किया जाएगा। सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि घर पर बैठक नहीं है, खेन बैठक आन हाउस। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो 2 तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 9628 21 64 82 और दूसरा तार की नंबर है 9638 25 97 25। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गजल दोर सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस आउट द फिल्म आजा नचले। And out of the film An Evening in Paris comes with Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान है गजल उधर लता मंगेशकर, हाँ उधर फेरदर मैं द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

आ कहीं दूर चले जाएं हम, वॉस आउट द फिल्म लावारिस। एंड आउट द फिल्म भारत इज इट फॉर लीजिए इन प्रोग्रामा गीतों के लहर, गजोंग दूर अभिजीत श्रीवास्तव इश्के दी चाचनी।

0: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
1: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ इंडिया।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरती बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले के फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेर नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।